ताइबंग पुम बने सोनरीबा चांबी हैबा मेरागे मबुंगो श्यामगिरी धरी नंगे मिंगलेन तबु सोंजगे पंगलबी ननाइदा पिनबियु नंगी दर्शन।

थौरम संदक्तुना ताहनजरिबा सी आकाशवाणी इंफाल की एफएम संगाई चैनल दगिनी हौजिक ताबिरसी तोंगान तोंगान बा सैसक पसिंग दगी मतमिसै सिंग मथंग मथंग उइना आहन बदा ताबिरसी असेम बिमला देवी ने सकबा सगोसेम इंद्र कुमार ना सेडिंग बा मतमिसैमा

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो मैम
0: गुड मॉर्निंग मणिपुर के थौरमदा तराम नोक चरे कनाव बिरबनो हाई बियो
1: मैम एक को पुलिस ने ते की बीरचंद्र सर मैम
0: बीरचंद्र
1: बीरचंद्र
0: होय बीरचंद्र करंबा मणिपुर फिल्म शैताबी गदबनो हाई बियो
1: इतो वो नुशी बगे फिल्म बगे नशी आई ना तो लाली बिनो मुकनानो तो मैं ने मुकासे के
0: होय इताउ इबुंगो नुशिबा फिल्म से दगे फिल्म मिंग दो अमतंग हाई बी उबा
1: इतना वो नो टीवी फिल्म देखी रशी ये ना तो लाली विनो मुख लानो तो तुम्हें
0: बेरा चान हम सिक्स बुक करी तब बिरम दी बनो
1: वो रेडियो से सुन ताजा लगे नहीं प्रोग्राम है सुन
0: होय ये कोई थोड़ा मिसे बुक चांग नाइन अगर इतना भी ब्रो
1: असुन सुन क्या हम सागो ले ले जाने आज तक आ
0: करम करम बा थोरम नगदी हे नपाम नता बिके
1: मैं आई अम बादम रोनो अदम
0: होय बिरा चांगी से एसी कोई हौजे खुरो तंबा गम जरोय दोरे तो पैसे मा वेन खन बिरो
1: ओनो ने ने जोय फिल्म गिने
0: आहा
1: नसन मिल मन सपा नुमा दी योले बला जगी ने पोले दो मे मन होय थाने
0: आ होय होय अदम गे शे कोई ले जरे हौजे खुरो तम जरो ग्लोरा
1: आ मे मु यगे ने हसरे मत
0: थागचले खुरो तम जरे बा इसे एसी नोंजु अहिंग फिल्म मसिदगी लाइश्रम में मन सकपा सनातन थौजा ने सैरिंग बा खुंजोय कुमार ना सैडांग बे सैसनी तबिसी

मखल मथेल की थौरम कया संदोक्चरी संगाई चैनल की पुंजा से मुक पुजरकली तोंगान तोंगान फिल्म सिंह लखचबा इसई सिंह।

धन्यवाद निरुपमा। ये आकाशवाणी इम्फाल का शंघाई चैनल है 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतमाला। मैं वाईकोम सिंह खेंगानबा अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आपकी सेवा में प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म खामोशी से अलका याग्निक और हरिहरन की आवाजों में इस गीत के साथ। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीत जतिन ललित का।

अभी आपने सुना फिल्म बदलापुर से रेखा भरद्वाज और अरिजीत सिंह की आवाजों में एक गीत. गीतकार है दिनेश विजान एवं प्रिया सरैया और संगीत सचिन जिगर का. साथियों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल के शंघाई चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम गीतमाला. अब सुनते हैं फिल्म अरमान से सोनू निगम और सुनिधि चौहान का गाया गीत. गीतकार है जावेद अख्तर और संगीत शंका एहसान लॉय का.

साथियों, इस गीत के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए हाजिर हैं थौदाम निरुपमा। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: lai harau bagi thoram da pam jan bahai ba thoram ama lai bau sa ba da pang thoi miwi pa na malem tengban ba da khundarak pa matam da lau upa pam jan ba hau ki ba du thoram asin na tai namu taibang oi ba sing na ahan ba da lai kut lai rai umang wamang asuk pa mong song da lai ram ba uhai wahai manama sing hing na charam ba da gi yum saduna lai rak pa chanana ba mahi marung tharak pa amadi lasing thaduna lang nairaga setna inaba phi sarakpa asi phungdoi
1: pamyan bagi thoramashina jagoi khuthek sathe ki matingna pamya laga phau hunba lasing thaba hekpa lang naiba charai phi saraga lining thau lai remada katpa kaya asibu mapung phana phungdoktuna utli
2: ho lain thau lai remama dairem cha
3: ho
2: aujik ti thingba ai pam hairasi ko maring pam tharasi ko
3: ho
2: खुद थांग पायरो सिंगंग पायरो पाम यालसे
3: यालसे
2: ओ पाम तुरे
3: तुरे
2: ओ पाम से खोमजलसे
3: खोमजले
2: ओ पाम कंग बनी न मई भी मेरा चिंग से
3: सिंग से
2: ओ पाम मई थार से
3: थार से
2: ओ पाम मई चाक पलोरे बनी न उपी उरे लसे खोम दो से
3: खोम दो से
2: ओ तुम उलै कंतौ न नबा माले मै थोंग कांग नबा योलै यो पा खुत पाइरो
3: पाइले
2: ओ माले मै पा से तौ रसे
3: तौ हे
2: ओ लैरांग खाउ द लैरांग मरु हापो लैरांग मरु हुन नबा
3: ओ
2: ओ हौजिक ती थांगजिंग मारजिंग वांग बेन कबरु माई कै मरी सुमदानी पान पोरी सिंगाई हुबु मा थोई तू न लैरांग मरु हुलो
3: हुले
2: ओ लैरांग मरु हुन बलो रे लैरांग मरु ओम से
3: ओम हे
2: ओलै खुत पाइर ग लैरांग मरु ओम बलो रे
3: लोरे
2: ओ लेरांग छ खुमु चोनन बला ये सिंखर की ओ ओ लेरांग खुमु चोंगे
3: चोंगे
2: ओ लेरांग छ लेना नी पाले
3: पाले
2: लेरांग छ खुमु वांगे
3: वांगे
2: ओ लेरांग मखोंग छो म से जोले यो पाक पाइरो
3: पाइरो
2: ओ लेरांग छ मखोंग दी फताउ दी हमल पुरा पुन मुगलक थो से
3: ओहे
2: नाइ नो लरे मदारेम छ ओ लेरांग छ जति ले मु वांगे
3: वांगे
2: ओ लेरांग से खंगौ दे लेरांग पोम ए
3: पोमे
2: ओ लेरांग छाले
3: छाले
2: ओ सिंगे लेरांग हेंग न बलेरांग खाउ छारो
3: खारे
2: ओ हौजिक तिने करौ दे अहुम हे से
3: हे से
2: मया आइ दे अहुम हे से
3: हे से
2: ओ मालेम दे सिंगे लेरांग अहुम हे से
3: हे से
2: ओ लेरांग खाउ दे लेरांग हापो
3: हापे
2: ओ लेरांग पोन छारो
3: छारे
2: ओ लेरांग पोमाई तुरो
3: तुरे
2: ओ हौजिक ति लाइन दो लारे मदाय रेम छा
3: हाओ
2: ओ लेरांग पोले से पूरे से चिंगु लाइ ममांग न थार सिको
3: हाओ
2: ओ थांगोन पायर गने लेरांग पोमाय हांग तो से ककसल से
3: ककसे
2: लेरांग पोमाय हांग दो ए
3: हांग
2: दो ओ फलेन फगजाओ पुथोक न लेरांग फौ दो से
3: फौ
2: दो से ओ लेरांग मन थो से
3: मन थो से
2: ओ लेरांग से हौजिक ति कपत्रेंग पुछले लग लेरांग मरु छले सिंग मरु से त से सिंगे लेरांग मरु लेसंग से लसंग तक पलोय रे
3: लोरे
2: ओ कप्रेंग थांग दो से
3: थांग दे
2: ओ लसिंग लेरांग से हौजिक ती ओ कापोनम धाप चल से
3: अफसल रे
2: ओ हुइद्री ने लेरांग लेरांग लसिंग से काप थो से
3: थांग दे
2: ओ हौजिक ती लेरांग काप पलोय रे
3: लोरे
2: लेरांग लसिंग से मोय थाप ता न भार म थांग जेलो
3: थांग जेले
2: ओ ई काम नमो
3: नमे
2: ओ लेरांग सिंखर लौरे ग सिल्लो
3: सिल्ले
2: ओ खुद ओ येत आनी न सिन बलोय रे को
3: ओये
2: ओ लेरांग सिंग से मोय थाप तारो
3: थारे
2: ओ हौजिक ति लेरांग सिंग न ताब मोय थाप ताब लोय रे मोय था मना म सिंग थुप्पो
3: थुप्पे
2: ओ हौजिक ति मोय था म पुन फारे को
3: फारे
2: ओ हौजिक ति लाइन दो लारे म दारेम छा
3: हो
2: ओ तारे पुछलो
3: पुछले
2: ओ तारे मय और हापो
3: हापे
2: ओ तारे लंगही पालो
3: पाले
2: ओ कोकाय हाथ चलो।

चेबी माँ पलीम सेमी बी मगने नुराई बी म थादोई थोईबी गदी उनागी खंकुक नुंसीदा लेबी हौरो को ऐसंग घर के देना अंगहांग नोंगयाई खंबदो संगसिल लंगली लमदमदो कमल इक्को।

0: खुंगंगी थोरम ताबिरी अदम थोरम ताबिरी वासी आकाशवाणी इम्फाल की कंगला चिनिल दगिनी
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: मैखू का थोकपा फोगिंग तौबना डेंगी थेंबंगम लोय
6: डेंगी हायरीबा वायरस थोकनबा लाइना मखलसी महिग यावरबा एडिस कौबा कांग मखलमने चिकपदेगी नाहली कांग मखलसी अयुक नुंगथिलगी मतमदता अयाम बचि ए
7: लायुंग सिंगदी अरुंगकन हौबा कोक यामना कन चिकपा सरु सयांग चिकपा मिटकी मनुंग थंगबा सरुक त चिकपा नाबा फाउबा माइंगक अमदि थबाकी सरुक त लाइ थोकपा गुमना मपाक मपाक थोकलोपा सिनी
6: लाइना आसी ओइब्र खंगदोकनाबा रिम्स अमदि जेनिम्सकी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ता ई चांगयंग तौथोकपियु
7: लाइना आसी दगी गा थोकनाबा पामबै सिंगदी
6: अचोनबा फुरित फिरोल लिपियु अयुक नुंगथिलगी मतमदसु repellent mosquito coil electric vapor mat na chingma sing season abiu
7: season nadra ba hundokto na thamba patra sing tyre sing chapu akaiba plastic cup kokta na chingba ising tungba yaba potlam sing thamdana ba hotna si
6: pau jinjeri ba directorate of health services amadi national health mission manipur
8: sairam college ki admission haujare Manipur University the affiliate tauba UGC na su recognize tauba langjing achobuda leiba South Asian Institute of Rural and Agricultural Management da BSc amsung MSc Agriculture Horticulture admission haujale akangna bisit machingni asimulak tonaming chanchen biho ekhoi contact number 7641811242

मशीन में दाम पुंग निपान ताब में तम्दा रेडियो लीला हेरा चंद्रा आहन बतांग कर दिला लंथुक पी के दबा जगोई नाचोम संगीत कला एकेडमी महाविद्यालय की लीला कांगू

한재 키위세이 니렌젠 우성기 모액다 로렌범 수실라 디비네 석바 이세이네 마루프싱 농시벌 레이범어 펌다 가이너버 술레이기니 하이버시다 라루이다르 칸제 박항레이샤 농시너버 오이러버수 मतम कोई ना युम्बान मिनर पर उइर बसु लाभ न करे काउन करे मिराई बिरम ले खाई न रे थुंग न दरे वाई सिंह सी तत्त न ताए अदुनने नुंशी वले बम फम्दा काइन बसु लेगनी नुंशी मैचाक चागनगनी

ओजित कुमार लुवांग सागी मयेक्ता वारेपम कुमार खुमनचाना सक्प मतमिसै सिगलोइनना तांकागसिदा मतमिसै सिंग लांथोपलोइजरे लोखचक्रिवै सैसिंग नुंशिवा मदि काइनबानिदा युमफमोइबा इसैसिंगनि मखल मथगि थोरुम के सन्दुक्तुने तहनजरिबसि आकाशवाणी इम्फागी एफएम संगाइ च्यानल दगिनि हौजिग मुग लांथोकसरि मणिपुरी फिल्म इसैसिंग खुदोलगि अहानबदा लैजरे सुके केदना निंथिजबी फिल्म असिदगी राहुल शर्मा मदि कालुंग कामै अनिपुन समिनबैसै रंजित निंथौजागी मयेक्ता जितेन कुमार नौरेमना सैरांगबैसैनी ताबिरसै

जिसे हर दिल अपने अपने अंदाज में समझता है, किसी के लिए पहली मुस्कुराहट तो किसी के लिए आखिरी याद, किसी के लिए साथ चलने का वादा तो किसी के लिए अधूरी कहानी। आज की शाम में हम प्यार के हर रंग से होकर गुजरेंगे, चाहे वो इश्क हो, इंतजार हो, दर्द हो, जुदाई हो, और फिर उस उम्मीद के साथ जिसके लिए हर दिल यूं ही ठहरता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने।

कहते हैं ना कि मोहब्बत कभी बताकर नहीं आती, वो बस धीरे धीरे किसी की आदत बन जाती है। सुबह की पहली याद, रात की आखिरी दुआ, और फिर एक दिन एहसास होता है कि हमारा दिल हमारा अपना नहीं रहा, बल्कि वो किसी और का हो गया है।

दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन अगर साथ सच्चा हो तो मुश्किल रास्ते भी छोटे लगने लगते हैं। साथ सिर्फ हाथ पकड़ने का नाम नहीं, बल्कि साथ वो भरोसा है जो कहता है तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हर पल में हूं तुम्हारे साथ। वो कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते आवाज नहीं करते, बस सुकून देते हैं, और वही सच मानिए सबसे खूबसूरत रिश्ते होते हैं।

कार्यक्रम चल रहा है हर सिंगार जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम खान. दोस्तों, हर कहानी मंजिल तक नहीं पहुंचती. कुछ रिश्ते बस सफर बनकर रह जाते हैं. जुदाई सिर्फ दूर रहने का नाम नहीं, कभी कभी एक ही शहर में रहकर या एक ही घर में रहकर लोग बहुत दूर रहते हैं एक दूसरे से, और कभी कभी दूसरे शहर में लोग रहकर भी एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं.

तो दोस्तों आज की इस महफिल में हमने मोहब्बत की बात की, साथ की बात की, दर्द को महसूस किया, जुदाई को समझा और उम्मीद को फिर से जी लिया। याद रखिए, जिंदगी में हर रिश्ता हमेशा नहीं रहता, लेकिन जिंदगी में आने वाला हर इंसान आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और आप कार्यक्रम का आखिरी गीत और इस गीत के साथ मुझे दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में आपसे। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Kiran Jha. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of armed forces, were also present on the occasion. A report.
1: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshne and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh and Air Marshal Ashutosh Dixit. Recipients of the Uttam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Dhiraj Seth, Air Marshal Manish Khanna and Vice Admiral Tarun Sopti. The medals were awarded to personnel for distinguished service of an exceptional order with Soumya Sharan, Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both nations. The Prime Minister returned home after concluding his three-day successful visit to the island nation. Our correspondent has more on Prime Minister's visit.
3: Visit. Mr. Modi visited and offered prayers at Navashakti Vinayagar Temple in Victoria. He also met the members of Indian diaspora there. He also paid floral tributes at the Mahatma Gandhi statue situated at Peace Park. In a social media post, Prime Minister Modi expressed happiness on attending the National Day celebrations that marks 50 years of independence of Seychelles. He also thanked the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermine, the government and people of Seychelles for their affection. During the visit, Prime Minister Narendra Modi became the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. During the visit, several MOUs and agreements in areas such as UPI, health agriculture, shipping, space cooperation, extradition and a line of credit were also exchanged between the two countries. With Aman's report, Aprajita Snatak, Akashvani News, Delhi.
2: Government's total commitment to the National Investment and Infrastructure Fund, NIIF, has now reached 260,000 crore rupees. This undertaking shows the centre's investment commitment for infrastructure and other nationally important sectors. The Union Cabinet last week approved an additional investment commitment of 30,000 crore rupees in the fund to accelerate infrastructure investment and catalyze institutional capital into the country. The West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026 have been passed in the State Legislative Assembly today. Under the provisions of the Public Safety Bill, a person can be detained for a maximum of 12 months under preventive arrest norm for anti-social activities which may cause disturbance to public safety and disturb public peace and order. Delhi Cabinet today approved the Delhi Electric Vehicle EV policy set for a phased 4-year rollout starting from 1st of next month. India today strongly condemned Pakistan's airstrikes on Afghan territory that have resulted in several civilian casualties, including women and children. India Meteorological Department has issued an orange alert for heavy rainfall over parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Konkan, Goa, Maharashtra, Karnataka, Kerala and Mahi tomorrow. The MET also further predicted heatwave conditions over Delhi, Haryana and Chandigarh for tomorrow. The Indian women's cricket team has become one of the first sides to qualify for the Los Angeles 2028 Olympic Games. The International Cricket Council today confirmed that India alongside Australia, Great Britain and South Africa have booked their places in the Women's T20 competition. And that's the end of the news.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णे और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मूज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का पारगमन फिर शुरू करने पर सहमत हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में टेक्सास में ब्राजील और जापान के बीच कांटे का मुकाबला जारी है। मैच में जापान ने 1 गोल की शुरुआती बढ़त ले ली, लेकिन हाफ टाइम के बाद ब्राजील ने बराबरी का गोल दागकर मैच में अभी 1-1 गोल की बराबरी कर ली है। इस नॉकआउट मुकाबले में पराजित होने वाली टीम विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सच कहूँ तो इतना सफर करते हुए थकने के बाद यदि फिर भी अंत में मुझे कहीं पहुंचना है तो केवल तुम तक।

मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 12:12 और 22 सेकंड। निशिगंधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आशा जी की आवाज़ के साथ।

इस गाने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि पैर खुद ब खुद थिरकने लगते हैं, और वैसे भी दिल अगर किसी के प्यार में धड़क रहा हो तो पैरों में घुंघरू खुद ब खुद बन जाते हैं। क्या कहते हैं आप, मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं। प्रोग्राम के साथ साथ मौसम भी खुशनुमा है, और ऐसे में फिर से एक और मीठा गीत सुन लिया जाए। अगला गीत आशा जी की आवाज़ में।

कुछ गानों की उम्र कभी खत्म नहीं होती है ना, जब भी वो सुनाई देते हैं दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। आशा जी ने इस गाने को जिस सादगी से और खूबसूरती के साथ गाया है वो सीधे दिल में जगह बनाता है। इस सुरीले सफर को यूं ही आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगला गीत मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। अगला गीत

वैसे एक बात तो सच है, मोहब्बत में एक दौर ऐसा भी आता है जब आपके लिए दुनिया के सारे नज़ारे, सारी बहारें, सारी खुशियां बस एक ही इंसान बन जाता है। फिर हम जहां भी देखें, जो भी सोचें, हर तरफ बस वही एक शख्स नजर आता है। आपको पता है, प्यार की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि ये हमें किसी एक इंसान का बना देता है। अगला गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में, अभी के लिए।

जो तुम्हारे लिए नहीं लिखा गया उसमें भी मौजूद हो तुम, जो तुम्हारे लिए नहीं लिखा गया उसमें भी मौजूद हो तुम, और अदृश्य की तरह मौजूद हो तुम हर तरफ, जैसे दूरी में बहुत दूर, जैसे जिंदगी में ना की बिंदी, इश्क का आधा श और इंतजार में अ की मात्रा की तरह। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:40 और 2 सेकेंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल निशिगंधा सुन रहे हैं आप, और अगला गीत रफी साहब की आवाज़ में।

जब तारीफ इतनी खूबसूरत और जादुई हो तो सुनने वाले का दिल ना खिले, ऐसा कैसे हो सकता है? जब दिल खिल चुका है तो फिर उसे महकना भी चाहिए। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

कितनी अजीब बात है ना, खुशबू को तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता। लेकिन जब कोई कहता है कि हमने देखी है ना आँखों की महकती खुशबू, तो समझ आता है कि इश्क पर एक नया रंग उतर आया है और ज़रूरत है उस रंग को महसूस करने की, समझने की और शायद अपनी ज़िंदगी में उतारने की भी।

निशिगंधा में आज के लिए बस इतना ही। 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। अब से फिर मुलाकात होगी 1:10 पर। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे, विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने बताया कि यह समिति शादी, तलाक और गोद लेने जैसे कुल 9 विषयों पर अध्ययन कर 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिन पूर्वोत्तर का दौरा करेंगे। श्री चौहान असम के गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में असम और आसपास के इलाकों में बाढ़ से फसलों और गांवों में हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। इसके बाद श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मूज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। फीफा विश्व कप में ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में ब्राजील ने जापान को 1-2 गोल से हरा दिया। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मैच में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में जर्मनी का सामना पैराग्वे से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच देर रात 2 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गीत सुहाने यानी कि एक ऐसा दौर जो इतिहास और स्मृतियों से हमें आवाज़ देता है, हमें पुकारता है। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ।

अभी आप सुन रहे थे साल 1962 की सुपरहिट फिल्म असली नकली का ये सदाबहार गीत, और आवाज थी लता मंगेशकर की, संगीत था शंकर जयकिशन का, और इस गीत के बोल लिखे थे यानी गीतकार थे शैलेंद्र साहब। इस फिल्म के निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी, और ऋषिकेश मुखर्जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो आम इंसान की ज़िंदगी पर फिल्में बनाते थे, लेकिन असली नकली की कहानी बाकी सभी फिल्मों से जो उन्होंने निर्देशित की थी उससे थोड़ी अलग और दिलचस्प थी। और अब हम सुनवाते हैं अगला गीत फिर से लता जी की आवाज़ में।

पारसमनी से सुना आपने ये गीत लता जी की आवाज में। गीतकार थे असद भोपाली और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये फिल्म 1963 में रिलीज हुई थी और ये एक संगीतमय फिल्म थी। इस फिल्म का निर्देशन किया था बाबू भाई मिस्त्री ने। बाबू भाई मिस्त्री वही जिनके बारे में कहा जाता है, जिन्हें सिनेमाई प्रभावों का जनक भी कहा जाता है। ये फिल्म आर्थिक रूप से सफल रही। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और इस फिल्म का संगीत काफी सराहा गया। फिल्म को तमिल में मायामणि शीर्षक से 1964 में रिलीज किया गया। और अब अगला गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में, फिल्म उजाला से।

साल 1959 की फिल्म उजाला का ये सदाबहार गीत सुन रहे थे आप, मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीतकार थे शंकर जयकिशन और ये गाना आज भी उतना ही फ्रेश लगता है जितना अपने दौर में रहा था। इस गीत को पिक्चराइज किया गया था शब्बी कपूर और माला सिन्हा पर। और अब अगला गीत रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में।

100.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:47 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने, यानी एक ऐसा दौर जो इतिहास और स्मृतियों से हमें आवाज़ देता है अपने संगीत के लिए, अपने गीतों के लिए। तो चलिए फिर सुनते हैं अगला गीत जगजीत कौर की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे साल 1964 में आई फिल्म शगुन से ये गीत जगजीत कौर की आवाज में। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आर्थिक रूप से बहुत सफल फिल्म नहीं रही, लेकिन इसके गानों को दर्शकों द्वारा खासा सराहा गया। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी वहीदा रहमान, निवेदिता और कमलजीत साहब ने। इस फिल्म का संगीत तैयार किया था खयाम साहब ने और गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। अगला गीत रफी साहब की आवाज में, फिल्म मदर इंडिया से।

गीत सुहाने प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। 2 बजे होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, आपसे फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्य के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान कानून के पालन के लिए राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने कहा कि ये समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर राज्य सरकार संहिता तैयार करेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि कानून का शासन ना तो कोई कल्याणकारी योजना है और ना ही कोई आर्थिक नीति है, बल्कि ये सत्ता के इस्तेमाल को अनुशासित करता है ताकि कोई भी व्यक्ति मनमानी करने वाली सरकार का शिकार ना बने। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस सम्मेलन में अपने मुख्य संबोधन में ये बात कही। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबू धाबी से आए 25 साल के एक यात्री को 2,38,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 7 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले आरोपी मोइन खान को एयर खुफिया इकाई ने खास जानकारी के आधार पर पकड़ा। नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच खतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि खतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। फीफा विश्व कप में ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में ब्राजील ने जापान को 1-2 गोल से हरा दिया। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मैच में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में जर्मनी और पराग्वे के बीच मुकाबला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan last evening. The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishish Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishish Seva Medals at the ceremony. The medals are awarded to the personnel for distinguished service of an exceptional order. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of the armed forces, were also present on the occasion. Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both the nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. In a social media post, he said, over the last 50 years, the relationship between the two nations has been characterized by profound trust and mutual advancement, whereas the forthcoming 50 years will be shaped by innovation, sustainability and collective prosperity. Government's total commitment to the National Investment and Infrastructure Fund, NIIF, has now reached 60,000 crore rupees. This undertaking shows the centre's investment commitment for infrastructure and other nationally important sectors. The Union Cabinet last week approved an additional investment commitment of 30,000 crore rupees in the fund to accelerate infrastructure investment and catalyse institutional capital into the country. The Ministry of Women and Child Development convened the 3rd preparatory meeting of the BRICS Women Track under India's BRICS chairship virtually in New Delhi yesterday. The meeting focused on advancing discussions on the priority areas and the key outcomes, including the digital repository of best practices and the BRICS Women's Capacity Building Guidelines. During the event, BRICS member countries shared their valuable inputs and reaffirmed their commitment to collaborative and consensus-based outcomes. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda launched a series of digital initiatives for the health sector in New Delhi yesterday. The launch included Arogya Setu 2.0, Ayushman Sarathi chatbot, Ayushman app, eSushrut clinic, National Health Claims Exchange and health standards to strengthen India's digital public infrastructure for health. The health minister also addressed the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare in New Delhi yesterday.
3: Applications launch is going to play a very important role. Under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, many new initiatives have taken place in the past 12 years. The National Health Authority and PM Jai Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has expanded the health facility and made it accessible and affordable throughout the length and the breadth of the country. And incorporates 62 crore people. And now India is the world's largest digital public infrastructure healthcare.
2: President Draupadi Murmu will embark on a 2-day visit to Andhra Pradesh from today. The President will attend the first convocation ceremony of the Central Tribal University of Andhra Pradesh at Viryanagaram today. Later, the President will attend the first convocation ceremony of the Central University of Andhra Pradesh at Anantapuram on Wednesday. The United States and Iran have agreed to pause their exchange of military strikes and allow commercial shipping to resume through the Strait of Hormuz, as President Donald Trump announced a fresh round of talks between the two sides in Qatar today. Trump posted on social media that Iran has requested a meeting and that it would take place in Doha, without providing further details on the agenda or level of representation. India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for very heavy rainfall over parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Konkan, Goa, Maharashtra, Karnataka, Kerala and Mahi today. The Met Department further predicted that heatwave conditions over Delhi, Haryana and Chandigarh today. The Indian women's cricket team has become one of the first sides to qualify for the Los Angeles 2028 Olympic Games. The International Cricket Council confirmed that India, alongside Australia, Great Britain and South Africa, have booked their places in the Women's T20 competition at Los Angeles 2028 Olympics. And that is the end of this news bulletin.

और इस तरह हर बार प्रेम करते वक्त कुछ ना कुछ छूटता रहा और इस तरह हर बार प्रेम करते वक्त कुछ ना कुछ छूटता रहा और हर बार उसके दूर चले जाने पर लगता रहा जितना भी प्रेम किया कम ही तो किया जिसे भी दिया प्रेम कम ही तो दिया। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 5 सेकंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम रात सुरमई। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई यानी एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम रात के सुरों को, रात के जज्बात को, रात के एहसास को अपने गीतों से, अपनी बातों से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ।

वाकई कुछ नजरें सिर्फ देखती नहीं हैं बल्कि दिल पर ठहर जाती हैं, दिल पर अपनी जगह बना लेती हैं। इस गीत में मोहब्बत का वो एहसास शामिल था जहां किसी की मौजूदगी ही दुनिया की सबसे बड़ी पनाह लगने लगती है। अगला गीत किशोर कुमार और लता जी की आवाज में गाता।

बातों की खूबसूरत सफर के साथ साथ गीतों का खूबसूरत सफर चालू है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है ना? जब साथ कोई अपना होता है तो रास्ते लंबे नहीं लगते, बल्कि इस रास्ते ही मज़ेदार होते हैं। मंजिल उतनी मायने नहीं रखती, क्योंकि जब साथ कोई अपना होता है तो हर मोड़ एक धुन बन जाता है। अगला गीत आप ही के लिए।

कभी कभी ऐसा होता है ना, मेरे साथ बहुत होता है कि दिल की बातें आंखों से कही जाएं तो कुछ और बात होती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर भाषा कह लीजिए, शब्द कह लीजिए, ठहर जाते हैं, वहीं पर निगाहों का निशाना बहुत दूर तक जाता है। क्या कहते हैं आप, मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं। अगला गीत आशा जी की आवाज़ में आप ही के लिए।

कुछ कहानियां अधूरी रह गईं, कुछ को छोड़ दिया गया अधूरा जानबूझकर, कुछ कहानियां अधूरी रह गईं, कुछ को छोड़ दिया गया अधूरा जानबूझकर। दोनों ही भटकती रहती हैं, अधूरा सा खालीपन, खाली सा अधूरापन लेकर एक अंत की खोज में। और इस भटकाव में एक रोज मिल जाती हैं

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू. वक्त हुआ है 2:40 और 29 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई. रात के सुरों को, रात के दर्द को अपनी कुछ बातों और गीतों से समझने की कोशिश. और इसी कड़ी में सुनते हैं हम अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में.

ख्वाब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो सिर्फ नींद में आते हैं, नींद में आते हैं, लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जो नींद खुलने के बाद भी आंखों में ठहर जाते हैं। शायद इसलिए रातें सिर्फ सोने के लिए नहीं होती, बल्कि कभी कभी वो दिल की सबसे खूबसूरत मुलाकातों की गवाह भी बन जाती है। और जब रात इतनी हसीन हो तो गीतों का सिलसिला, बातों का सिलसिला थमें कैसे। आइए इसी खुशनुमा एहसास के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गीत।

0: मोहब्बत में धीरे धीरे बोलने की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि मोहब्बत को कभी भी ऊंची आवाज की जरूरत नहीं पड़ती। दिल की बातें हमेशा धीरे धीरे ही कही जाती हैं ताकि दुनिया नहीं सिर्फ वही शख्स उन बातों को सुन पाए जिसके लिए वो बात कही गई है। अगला गीत किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

जब प्यार हो ही गया है तो फिर उसे इजहार किया जाए, उनका ध्यान रखा जाए और अपने व्यवहार से उस प्यार को साबित भी किया जाए। रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी 3 बजे आप सुनेंगे समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी अर्चना सचदेवा। मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने कहा कि ये समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर रहेंगे। श्री चौहान असम के गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में असम और आसपास के इलाकों में बाढ़ से फसलों और गांवों में हुए नुकसान की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबू धाबी से आए 25 साल के एक यात्री को 2,38,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 7 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले आरोपी मोइन खान को एयर खुफिया इकाई ने खास जानकारी के आधार पर पकड़ा। नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का पारगमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में जर्मनी और पैराग्वे के बीच मुकाबला जारी है। हाफ टाइम तक मुकाबले में पैराग्वे 1-0 से आगे है, वहीं ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the phase second of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan last evening. The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. The medals were awarded to the personnel for distinguished service of an exceptional order. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of armed forces, were also present on the occasion. Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both the nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. In a social media post, he said, over the last 50 years, the relationship between the two nations has been characterized by profound trust and mutual advancement, whereas the forthcoming 50 years will be shaped by innovation, sustainability and collective prosperity. The West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026 have been passed in the State Legislative Assembly. Under the provisions of the Public Safety Bill, a person can be detained for a maximum of 12 months under preventive arrest norm for antisocial activities, which may cause disturbance to public safety and disturb public peace and order. The Maintenance of Public Order Amendment Bill, the original Act of 1972, has been amended with the objective to impose payment of compensation on individuals committing arson, vandalism and damage to public and private properties. The governments of Haryana and Rajasthan signed an agreement for the construction and implementation of the Yamuna Water Project in the presence of Home Minister Amit Shah in New Delhi yesterday. Speaking on the occasion, the Home Minister said the agreement has resolved the nearly 3-decade-old water-related problem faced by the people of Haryana and Rajasthan. Under the agreement, approximately 580 million cubic meters of water will be supplied from the Yamuna Canal to the Rajasthan through these underground pipelines from the next month to October. The Ministry of Women and Child Development convened the third preparatory meeting on the BRICS Women Track under India's BRICS chairship virtually in New Delhi yesterday. The meeting focused on advancing discussions on the priority areas and key outcomes, including the digital repository of best practices and the BRICS Women's Safe Capacity Building Guidelines. During the event, BRICS member countries shared their valuable inputs and reaffirmed their commitment to collaborative and consensus-based outcomes. President Draupadi Murmu will embark on a 2-day visit to Andhra Pradesh from today. The President will attend the first convocation ceremony of the Central Tribal University of Andhra Pradesh at Viryanagaram today. Later, the President will attend the first convocation ceremony of the Central University of Andhra Pradesh at Ananthapuram on Wednesday. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will be on a 2-day visit to the Northeast from today. Mr. Chauhan will hold a high-level review meeting in Guwahati in Assam. The meeting will review the impact of the floods on crops, villages and critical infrastructure in Assam and adjoining areas, assess the progress of ongoing relief operations and discuss the requirements of further assistance and intervention. The United States and Iran have agreed to pause their exchange of military strikes and allow commercial shipping to resume through the Strait of Hormuz, as President Donald Trump announced a fresh round of talks between the two sides in Qatar today. Trump posted on social media that Iran had requested a meeting and that it would take place in Doha, without providing further details on the agenda or level of representation. The Indian women's cricket team has become one of the first sides to qualify for the Los Angeles 2028 Olympic Games. The International Cricket Council confirmed that India, alongside Australia, Great Britain and South Africa, have booked their places in the women's T20 competition at Los Angeles 2028 Olympics. IMD has issued an orange alert for very heavy rainfall over parts of Northeast India, Sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Konkan, Goa, Maharashtra, Karnataka, Kerala and Mahe today. And that is the end of this news bulletin.
3: 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल. आइए सुनते हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हमराही.

रात के 3:11 और 13 सेकंड हुए हैं। हमराही कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खामोशियां बहुत कुछ कह जाती हैं, मगर जब लफ्जों को संगीत का साथ मिल जाए तो वो सीधे रूह में उतर जाते हैं। मोहब्बत का दौर चाहे कोई भी हो, लेकिन जो बात 60 और 70 के दशक के गानों में थी, वो बात ही कुछ अलग थी। उस समय इजहारे मोहब्बत में आंखों से सवाल होते थे और धड़कनों से जवाब मिलते थे।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आप आई बहार आई से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, मोहब्बत में जब महबूब थोड़ा दूर दूर रहता है तो दिल की बेताबी और बढ़ जाती है। फिर दिल खुलकर तो नहीं कहता, लेकिन आंखों ही आंखों में एक प्यारी सी शिकायत करता है कि देखिए हुजूर, मुझसे रह के दूर दूर।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में फिल्म तू नहीं और सही से ये गीत आपने अभी सुना। दोस्तों, जब दिल में कोई उतरता है तो ढोल नगाड़े नहीं बजते, बल्कि आंखें चुपके से इशारे करती हैं। और फिर क्या होता है, सुनिए।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में फिल्म कश्मीर की गली से आपने अभी ये गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म दोस्ताना से।

रफ्तार में वो जादू है कि दिल ठहर जाता है, रफ्तार में वो जादू है कि दिल ठहर जाता है, जब वो सामने से गुजरते हैं तो समा ठहर जाता है। आइए इस मीठी सी तकरार और मोहब्बत की नोकझोंक को सुरों के इस खूबसूरत सांचे में ढालते हैं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म सारंगा से अभी आपने गीत सुना। नजर का नजर से मिलना ही कमाल नहीं होता, नजर का नजर से मिलना ही कमाल नहीं होता, मोहब्बत में हर सवाल का जवाब नहीं होता। ये तो दिलों के तार हैं जो चुपके से जुड़ जाते हैं, इस प्यार की जादूगरी के आगे फिर कोई पहरा नहीं होता। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कोहिनूर से ये गीत।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म संजोग से अभी आपने गीत सुना, ऐ मोहब्बत तुझसे वाकिफ करा गई, ऐ मोहब्बत तुझसे वाकिफ करा गई, वो खूबसूरत नजर हमें इश्क सिखा गई।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अभिलाषा से अभी आपने ये गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं, जिस देश में गंगा बहती है फिल्म से, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में।

दोस्तों हमराही कार्यक्रम से भी अब हमारा लौटने का वक्त आ गया है और इसी के साथ ही अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा

0: पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने बताया कि ये समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। श्री अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर रहेंगे। श्री चौहान असम के गुवाहाटी में बाढ़ से फसलों और गांवों में हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। इसके बाद श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर रहेंगे। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबुधाबी से आए 25 साल के एक यात्री को 2,38,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 7 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले आरोपी मोइन खान को एयर खुफिया इकाई ने खास जानकारी के आधार पर पकड़ा। नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मूज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में अमेरिका के बॉस्टन स्टेडियम में जर्मनी और पैराग्वे के बीच मुकाबला जारी है। दोनों टीमें अभी 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। वहीं ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। ब्राजील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। अब रविवार को न्यूजर्सी के ईस्ट रदरफोर्ड में राउंड ऑफ 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan last evening. The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. The medals were awarded to the personnel for distinguished service of an exceptional order. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of armed forces, were also present on the occasion. Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both the nations. The Prime Minister returned home after concluding his three-day successful visit to the island nation. In a social media post, he said, over the last 50 years, the relationship between the two nations has been characterized by profound trust and mutual advancement, whereas the forthcoming 50 years will be shaped by innovation, sustainability and collective prosperity. Government's total commitment to the National Investment and Infrastructure Fund has now reached 60,000 crore rupees. This undertaking shows the centre's investment commitment for infrastructure and other nationally important sectors. The Union Cabinet last week approved an additional investment commitment of 30,000 crore rupees in the fund to accelerate infrastructure investment and catalyse institutional capital into the country. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda launched a series of digital initiatives for the health sector in New Delhi yesterday. The launch includes Arogya Setu 2.0, Ayushman Sarthi chatbot, Ayushman app, eSushrut clinic, National Health Claims Exchange and health standards to strengthen India's digital public infrastructure for health. The health minister also addressed the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare in New Delhi yesterday. The West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026 have been passed in the State Legislative Assembly. Under the provisions of the Public Safety Bill, a person can be detained for a maximum of 12 months under preventive arrest norm for antisocial activities, which may cause disturbance to the public safety and disturb public peace and order. In the Maintenance of Public Order Amendment Bill, the original Act of 1972 has been amended with the objective to impose payment of compensation on individuals committing arson, vandalism and damage to public and private properties. President Draupadi Murmu will embark on a two-day visit to Andhra Pradesh from today. The President will attend the first convocation ceremony at the Central Tribal University of Andhra Pradesh at Virianagaram today. Later, the President will attend the first convocation ceremony of the Central University of Andhra Pradesh at Anantapuram tomorrow. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will be on a two-day visit to the Northeast on today. Mr. Chauhan will hold a high-level review meeting in Guwahati in Assam. The meeting will review the impact of the floods on crops, villages and critical infrastructure in Assam and adjoining areas, assess the progress of ongoing relief operations and discuss the requirement for further assistance and intervention. India strongly condemned Pakistan's airstrikes in Afghan territory that have resulted in several civilian casualties, including women and children. In a statement, the External Affairs Ministry said that this blatant act of aggression by Pakistan is an assault on Afghanistan's sovereignty and direct threat to regional peace and stability. The United States and Iran have agreed to pause their exchange of military strikes and allow commercial shipping to resume through the Strait of Hormuz as President Donald Trump announced a fresh round of talks between the two sides in Qatar today. Trump posted on social media that Iran had requested a meeting that it would take place in Doha without providing further details on the agenda or level of representation. The Indian women's cricket team has become one of the first sides to qualify for the Los Angeles 2028 Olympic Games. The International Cricket Council confirmed that India, alongside Australia, Great Britain and South Africa, have booked their places in the women's T20 competition at Los Angeles 2028 Olympics. And that is the end of this news bulletin.
3: सौ दशमलव एक मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल. आइए सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा.

सुबह के 4:11 और 16 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों, ये दुनिया एक मेला है और यहाँ हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, और अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो वो आपको दुआएं ही देगा। और जिसके पास आज के समय में बड़ों का आशीर्वाद और दुआएं हैं, उसके पास सब कुछ है।

गीता दत्त और उषा मंगेशकर की आवाज में फिल्म माँ बाप से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी है तो सुख दुख तो चलेंगे ही, सुख आए तो उसमें सहज रहिए और दुख आए तो उसमें बिना घबराए उसका मुकाबला कीजिए।

किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिल्म पाप को जलाकर राख कर दूंगा फिल्म से अभी आपने गीत सुना। आज की इस भागदौड़ भरी लाइफ में अगर कुछ फुर्सत के पल मिल जाएं तो कितना सुकून मिले ना दोस्तों। आइए सुनते हैं इस गीत के द्वारा कि सुकून कैसे मिले।

लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाज में फिल्म मौसम से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म बूट पॉलिश से।

लक्ष्य यानी मंजिल साफ हो, निश्चित हो, तो हमारा पूरा ध्यान उसी सफर पर रहता है और फिर जिंदगी में भटकाव खत्म हो जाता है। आइए सुनते हैं नाग मंदिर फिल्म से लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में ये गीत।

मुकेश की आवाज में फिल्म शोर से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिस तरह नदियां बिना कुछ इधर उधर देखे अपनी ही धुन में चलती रहती है, उसी तरह आपको भी अपने लक्ष्य के लिए बिना रुके हुए आगे बढ़ते जाना है।

जसपाल सिंह और साथियों की आवाज में फिल्म गीत गाता चल से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों कहते हैं कि दिल बार बार नहीं धड़कता, पर जब ये पुराने गीत और बीते दौर की यादें सामने आती हैं तो ये दिल एक बार फिर से बच्चा बन जाता है। तो चलिए दिमाग के सारे दरवाजे बंद कीजिए और इस संगीत के सफर में दिल दे के देखो।

मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म दिल दे के देखो से अभी आपने गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अंदाज़ से।

दोस्तों, जिंदगी के सफर का इसी तरह आनंद लेते रहिए और अरुणिमा कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने बताया कि ये समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल के समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर रहेंगे। श्री चौहान असम के गुवाहाटी में बाढ़ से फसलों और गांवों में हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। इसके बाद श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर रहेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का भी दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबुधाबी से आए 25 साल के एक यात्री को 2,38,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 7 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया है। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। इसके साथ ही पैराग्वे राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर गई है, जबकि जर्मनी विश्व कप से बाहर हो गई है। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। ब्राजील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। अब रविवार को न्यूजर्सी के ईस्ट रदरफोर्ड में राउंड ऑफ 16 में ब्राजील का अगला मुकाबला आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Akhila. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan last evening. The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. The medals were awarded to the personnel for distinguished service of an exceptional order. Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both the nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. In a social media post, he said, over the last 50 years, the relationship between the two nations has been characterized by profound trust and mutual advancement, whereas the forthcoming 50 years will be shaped by innovation, sustainability and collective prosperity. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will be on a 2-day visit to the Northeast beginning today. Mr. Chauhan will hold high-level review meeting in Guwahati, Assam. The meeting will review the impact of the floods on crops, villages and critical infrastructure in Assam and adjoining areas, assess the progress of ongoing relief operations and discuss the requirements for further assistance and intervention. Following the review in Assam, Mr. Chauhan will visit the flood-affected areas of Arunachal Pradesh tomorrow. He will undertake both aerial and ground surveys to assess the condition of flood-hit villages, agricultural fields and relief camps. West Bengal government has decided to implement the Uniform Civil Code, UCC, in the state. Chief Minister Subhendu Adhikari announced in the Assembly that a draft proposal of the bill will be presented at the scheduled state cabinet meeting on July 2nd. Following the models of the Gujarat, Uttarakhand and Assam, a committee has been formed under the leadership of retired Supreme Court Judge Justice Ranjana Desai. Chief Minister stated that the committee will conduct a study on a total of 9 subjects, including marriage, divorce and adoption, and submit its report within 4 weeks, based on which the state government will formulate the code. However, he clarified that the scheduled tribes, Adivasis, Kurmis and ancient indigenous communities will be kept outside the purview of this law. The West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026 have been passed in the State Legislative Assembly. Under the provisions of the Public Safety Bill, a person can be detained for a maximum of 12 months under preventive arrest norm for antisocial activities, which may cause disturbance to public safety and disturb public peace and order. In the Maintenance of Public Order Amendment Bill, the original Act of 1972 has been amended with the objective to impose payment of compensation on individuals committing arson, vandalism and damage to public and private properties. Ahead of the 57-day-long annual Amarnath Yatra beginning July 3rd, security agencies have intensified preparations across the pilgrimage route from Punjab to Jammu and Kashmir, conducting mock drills, activating surveillance systems and strengthening inter-agency coordination to ensure the safe movement of thousands of pilgrims. Special Operations Group, SOG of Jammu and Kashmir Police and the National Security Guard NSG conducted a joint counter-terror mock drill at the historic Raghunath Mandir in Jammu yesterday ahead of the Amarnath Yatra. The exercise simulated a high-risk terrorist attack scenario, testing the response capabilities of security agencies through rapid intervention, area domination, hostage rescue, casualty evacuation and coordinated operations. India has strongly condemned Pakistan's airstrikes in Afghanistan territory that have resulted in several civilian casualties, including women and children. In a statement, External Affairs Ministry said that this blatant act of aggression by Pakistan is an assault on Afghanistan's sovereignty and a direct threat to regional peace and stability. The Indian women's cricket team has become one of the first sides to qualify for the Los Angeles 2028 Olympic Games. The International Cricket Council confirmed that India, alongside Australia, Great Britain and South Africa, have booked their places in the Women's T20 competition at Los Angeles 2028 Olympics. And that is the end of this news bulletin.
3: 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी।

सुबह के 5:11 और 10 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना ससदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सुबह की पहली किरण हमारे जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह देती है, और इसी के साथ अगर प्रभु का स्मरण हो जाए तो सोने पे सुहागा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से भजन से, जो गाया है सुभाष जैन ने।

बीत गई जो रात अंधेरी लाया सवेरा नई उमंग। बीत गई जो रात अंधेरी लाया सवेरा नई उमंग। चलो सवारे अपनी सुबह लेकर मन में एक नई तरंग।

आशा भोसले मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में फिल्म रंगीला राजा से अभी आपने ये गीत सुना। दोस्तों मांझी जिस तरह अपनी नाव को बिना रोके आगे बढ़ता रहता है,